0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
2: कुखुरालाई दाना दिने बेलामा किन लौरो खोज्नु भयो तपाईले?
3: एउटा सर्प छ कि कुखुराको फार्मनिर, त्यसलाई लौरोले तसाए भाग्थ्यो कि? छिटो ल्याऊ न।
2: सर्पलाई चिद्याउनु चलाउनु हुँदैन नि, नत्र हामीलाई बस्न सक्छ। बरु घरभित्र आउन लाग्यो भने चाहिँ धपाउला।
3: फार्ममा पसेर कुखुरा मारिदेला र खाइदेला भनेर धपाउन खोजेको हो नि रजनी।
2: फार्ममा किरा फट्याङ्ग्रा मुसा सर्प छिद्न नसकुन् भनेर फलामको जाली हालेको छ त। सर्पले कुखुरालाई क्षति पुर्याउन सक्दैन। बरु तपाईँलाई डसला ठाडे बस्नुहोस् है।

0: प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
1: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
2: रजनी वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाओ तो अच्छा लिखाओ तो
3: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं काकर लट्ठी खा देती अब ना
2: एक तो सपा का मुर्गी न खा रखे लट्ठी से डुरेले से बक्सा की आनो हाली छट्टा
3: तापन घिसका चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आए लागी कलर से भगे भी
2: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाए खुद लखो का
3: आरम कीड़ा फटिंगा मुंह सांप सिर नीचे आकर कहीं का फलाम का जारी लगा बात तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना दाठी डूरा रिना
2: हो बिना था क्या करना हो सपा देखती की डर नागर लगना रही था देव सपा तो अपना घूम का बारी वो कर ली था
3: हमारे चल सांपन से डरे ना नहीं होनी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करक लाख व आपन बचाव करक लाख सांप दस ना कर था
4: सांपन से दूर रही सांपन रीस नी लगाई व नी जिसके सांप मने देख कर डरे था नी चलाख दूर रहे सांप नी डस्ट तर मुखर खेना खुआ बाहर निस्कृत घास काट बेल ख्याल बेल ज्ञान बेल छुबे से मनई मही मारकवार बाट कना सबस्क पति रक्षा करना क्रम में सांप दस लाख अर्थ मनई सापन व्यक्ति की मारक लाग रहा उसी का करबे थे सांप दस लाख अर्थ
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेदिथा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: रोका रोका रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाइ यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
5: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान बर्जनाउ कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कन इलर काफे कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहा
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पी रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: सासानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला
3: टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली We'll be right back.

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबरमा यहाँ उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेर सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक टिकापुर सहित सुदूरपश्चिम के 3 प्रादेशिक अस्पताल है 100 में स्तर उन्नति करना। कैलाली के टिकापुर जानकी के किसान उपकरण के बारे में फरल तरकारी खैना योग्य 600 से ढेर किसान प्राकृतिक खेती करती। जानकी गांव पालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा। ई वर्षा के बजट में सुदूरपश्चिम ठगोपाइल प्राध्यापक डॉक्टर कुवर के कहाई। बलिराम चौधरी से टिकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख के पदभार ग्रहण। आप पूरा खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करलवा। प्रदेश प्रमुख नजीर मियां से कालिक प्रदेश सभा बैठक में प्रदेश सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करल बाटे। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में 25 लाख से समेत कम लागत में आयोजना बजेट विनियोजन नई करना नीति लेहल उल्लेख करगिल बा। शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन पूर्वाधार विकास के क्षेत्र है नीति तथा कार्यक्रम के प्राथमिकता में ढरल बताइल बा। स्तंकर के सुशासन प्रवर्धन में मुख्य जोर दईगिल बा। प्रमुख प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लघु उद्यम कार्यक्रम द्वारिका देवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम दशरथ चन्द शिपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम समृद्धि कलाक स्वस्थ नागरिक स्वास्थ्यमा प्रविधि समृद्धिमा समेत गति वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम मुख्यमंत्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति जलवायु मैत्री नमूना गांव कार्यक्रम सचेत युवा सुरक्षित भविष्य सुशासन और समृद्धि कलाक डिजिटल प्रदेश लगायत के योजनामा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख करगिल बा। नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश के 3 प्रदेश अस्पताल प्रदेश अस्पताल है 100 स्तर उन्नति करना हुई बा। प्रदेश सरकार माठत रहल सेती महाकाली ओ टिकापुर अस्पताल है 100 स्तर उन्नति करना कहल बा। उस तक 6 पहाड़ी जिला में रहल जिला अस्पताल है 25 से लेके 50 स्तर उन्नति करना नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख कर। टिकापुर नगरपालिकामा बलिराम चौधरी कार्यवाहक नगर प्रमुख के पदभार ग्रहण करल बाटे। वार्ड नम्बर 6 के वडाध्यक्ष रलक चौधरी पदभार ग्रहण सँगै नगरपालिका के दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधि समेत प्रभावकारी रूपमा आगे बढ़िना बताइल बा। कुछ दिन आगे समेत बैठक से वहाँ कार्यवाहक के जिम्मेवारी दै गेले हो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर केशर बहादुर कुवर संघीय सरकार से लागल आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट में सुदूरपश्चिम हे ठगल बटुले बाटे। वहां कैलाली के पूर्वी क्षेत्र झने ठगोपायल बटुकेल बाटे। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के कार्यक्रम आज को चर्चा में बोलती डॉक्टर कुवर से स्वास्थ्य शिक्षा विद्युत जैसी अत्यावश्यक क्षेत्र में कर लगा के निम्न वर्ग झने प्रभावित हुई बटुले बाटे। मनो बजेट के बढ़क आकार अनुसार कानून हुई से केल समय थे निम्न वर्ग के आर्थिक स्थिति में कुछ ऊपर उठ सकना समेत बताइले बाटे। जानकी गांव पालिका है पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा करगिल बा। आर्थिक वर्ष 2082-83 के चैत मसान्त सम पालिका भीतर के सकु लक्षित बाल बालिका हुकरण के आवश्यक खोप प्राप्त करल पाछे पालिका है पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा कर गिले खो। प्राप्त विवरण अनुसार जन्मल के 15 महीना सम 718 जाने ओ

0: 16 से लेके 23 महीनासम के 531 जाने तथा 24 से लेके 59 महीनासम के 1,739 बाल बालिका है पूर्ण खोप प्राप्त कर लग बता गेल बा। साथे पालिकामा शून्य डोज माफे समेत बाल बालिका नैरलक तो खोप छुटलाक 6 जाने बाल बालिका है फे समेत पूर्ण खोप प्रदान करगिल पासे पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगुपना पालिका घोषणा करगिल। पालिका के खोप समन्वय समिति के अध्यक्ष गणेश चौधरी के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में गांव पालिका के उपाध्यक्ष लालमती देवी कथरिया वाड़ाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य स्वास्थ्य कार्यालय के कैलाली के प्रतिनिधि जनस्वास्थ्य निरीक्षक ओलत नारायण चापागाई खोप सुपरवाइजर अधिकृत प्रदीप जोशी लगायत के सरकार वाला निकाय के प्रतिनिधि हुकरण की उपस्थिति में कार्यक्रम करगिले खो। कार्यक्रम में वक्ता हुकरा बाल बालिका हुकरण के स्वास्थ्य सुरक्षा के लाग खोप अभियान ही निरंतरता प्रभावकारी रूप में संचालन कर पर्ना में जोर दिल बाटे पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा हुई पासे फे नियमित खोप सेवा अभिभावक सचेतना तथा अनुगमन हे निरंतरता देना जानकारी करागिल बा। खोजखबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फेर से बीच सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
3: जानकी गाउँ पालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
4: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई

0: स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
1: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
2: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त बाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
3: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
4: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
5: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
2: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
6: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
7: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
8: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
6: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 9844648673 र 9864680204।
9: ए रुक रुक रुक,
10: के भयो, किन कराएको यस्तो?
9: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड
11: रेटमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
10: हो र?
9: हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
12: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
13: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
14: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
13: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठ भी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
14: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
13: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
15: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: यता त डरै रिसाए पनि बोलेनन् खै
1: खै यति करलान्डन नजाने के हो गठे
2: यहाँ रियाली छ क्या
3: हे के भनम खै हे

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकला झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भयो म त अब
4: भाईलाई थाहै रहेन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848578228

0: बा आइकै क्या, आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हर्या।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनीना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
2: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कर लबाटी।
3: ए ले ले ठीक है बा, चल हाली भात वट खाई और जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स, बलभद्र चौक टीकापुर, प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-6-84-41-208 और 98-4-86-39-261।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटाका था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिंठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28

0: हजुर बिल्कुलै रमाइलो गीतकी बाजा भन्ज स्वागत कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटोमा मिशन मेकर साथ बाबु रत्नापुर मगर और यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz उसका हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत व्यापक हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाइसक ठेगानामा जानकारी कर्तीबाट कोही टेलिफोन लाइन मेलबाट म बोल्न चाहन्छु। हजुर राम राम। हजुर राम राम।
1: राम राम हजुर।
0: के बोल्ली कहाँ से?
1: हजुर टीकापुर से सीताराम चौधरी।
0: ओहो सीताराम जी कहाँ हेराइल रही आजकल अपने?
1: हेराइल तो ना हूँ यही बात हूँ।
0: बड़ा देर दिन पास याद कर ली तब मारे मेरे को सीताराम जी कहाँ हेराई गिला?
1: हाँ कबू कबू समझे पड़त।
0: अच्छा कबू कबू समझे पड़ल। आप मैया कुछ फिक्का भी लागल की का?
1: मैया फिक्कल नहीं हो रेडियो तो सुनथू अब कबू कबू गीत नहीं गाना मन लागत चिंता में रखू।
0: गीत नहीं गाना मन लागत कबू कबू और गाल फिर सुने पड़त नहीं?
1: हजुर।
0: ओके कार्यक्रममा सहभागी जनैली आज कैसिन बा मौसम टिकापुरमा अपने ठाउँमा कतरा कठे गर्मी बाज?
1: अब मौसम तो कैसिन आजकल बर्खा लागत आप ठिके बा कहे करल।
0: ओके कैसिन चलता अपने के व्यापार व्यवसाय?
1: व्यापार तो आजकल मुर्गा पानी सटेज बा चलती बा
0: चलती बा वही। कार्यक्रममा सहभागी जनैली एकदमै खुसी लागल आज गीत गैना हो अन्ताक्षरी खेल्न हो अन्ताक्षरी खेलेक तयार बाटी?
1: हजुर आज एक दुई शब्द त गई।
0: ओके त सुरु में अपने गई भी कि मै गाउँ?
1: अब मैं त नै कनारी मनै मै गाउँ।
0: ओके लि सुरु कहि दा।
1: हजुर नुक नुक हेर्नु छैले देख्नु बरे सुख नुक नुक हेर्नु छैले लै जेबो उधार के तुहिन अपन घर छैले लै जेबो ले झटन जान्छौ
0: तुहिन अपन घर नै? ओके मैं रस गीत गाउन अपने रोजल बठनिया कैसिन सरल भोरु जय सिन छाटल बठनिया कैसिन अजराइल गोरु जय सिन च्याउ च्याउ बिलरिया बोलट म्याउ म्याउ सुगुर जनी हो सुगुर जनी छाट के ना ले हो भैयो सुघुर जनी के दिल भरा खोट रे सुघुर जनी छाट के ना ले हो भैयो सुघुर जनी के दिल भरा खोट रे। अपने रस है गाई फैन?
1: रस
0: है रा दीदी कोई भी अक्षर से
1: राप्ती लदिया बहाल राप्ती लदिया बहाल राप्ते लदिया बहार पानी में मछरी छे लाल। आई गाना थे ना जब चोरी के साथ हो नहीं जाना।
0: चलो चलो कोई बात नहीं कार्यक्रम में सहभागी जने लिया अब एक हमें गीत जोड़ा अपने के लगा अपने किन किन सुनाई चाहिए नाम ली
1: ले समझना तो हमने आप कहे पर आप सबसे सबसे शुरू में तो अपने ही समझू आप
0: धन्यवाद
1: बाता है वहाँ वहाँ बाबू ही थे नाम लेते जाते हूँ रखना फोन वहीं कहीं पढ़ना जाके हमारे सबसे ढेर संघर्ष आजकल ग्रुप कल जरूरी है बात है सुशीला।

फोन किए सीताराम दही जी रमाइलो गफिल बराक ढेर दिन पाछे याद करने वहां हमन आज ढेर दिन पाछे समझने वहां है ढेर ढेर धन्यवाद देना चाहम कार्यक्रम में सहभागी जने टिकर भी अपने कृपया 0915-61-255 के लाइन को लेवा ठीक ठाक गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 0915-61-255 लाइन खोलेगा।

अझ झुमे झुमे मन झुमे झुमे मन झुमे गगन बिल्कुलै रमाइलो गीजोली कार्यक्रममा बाटोमा हामी सन्मिक साथ भेट्ने बाबु रत्नपुरमा घर भरकर रेडियो खलबिकल्सी हो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज उसले हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो हाम्रो सुन्ने सक ठिकाना मेरो दोकान जानकारी गर्दै बाटो डायल गरी 091-5162-55 केलाइन खुल्लै वा कोइटेल फोन लाइन मेल बाटोमा बोल्कन छ हजुर राम राम ओके वहाँ सम्पर्क में नहीं सर लागत में कार्यक्रम में सहभागी जनाइए करबी लगभग लगभग अपने कन के संगे हमारे बटी अपने हमारे संगे चाहे सहभागी जनाइक एकदम जरूरी रही कन में अपने जानकारी का दिबा टुकाएगी अपने कन संगे रमाइलो गप करना हो रमाइलो बातचीत करना हो तो अपने जहां रले से फेन जोन ठाव में रले से फेन कार्यक्रम में सहभागी जनाइए विशेष करके गीत गाने इच्छा रहा रुचि रहा सब खल संगे हम कल करे एकदम जरूरी रही कन में अपने जानकारी का दिबा तो फटाफट चाहे डायल करबी एक चोटी हिचकिचाके मै फेन कोन कम मै फेन ताक्षरी खेले सकम मै फेन गीत गाई सकम कना सोच बनागे कार्यक्रममा सहभागी जनाइदी कनामा यात्रोगन निवेदन करती बारू तो फटाफट चाहिँ डायल करते करी 091-5162-55 के लाइन मा एकदमै खुल्ला भा कोही टेलिफोन लाइन में बाटे में बल करना चाहूँ हजुर राम राम ओके ठीक गीत जोड़ब हमरे लाइन में नहीं हुई थोड़ा मैलो गीत जोड़ब गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते कर भी 091-5162-55 तब समय इंजॉय करी ई रमाइलो गीत से

0: Okay, माया के जाल से मही फकैलो बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम है जोली भर्खर रेडियो खरौल बिकासी हो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज वस्ते का हमारा वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फते इंटरनेट के पहुंच सरल संग आरोग्य हम सुन सकते टोकलग लाइन हमारे खुला बा सुने 91.561 252 के लाइन खुला बा
1: और अपने आईपीसी कोई टेलीफोन लाइन में मैं बोल करना चाहूँ हजुर राम राम
2: राम राम हजुर राम राम
1: सीताराम जी हो
2: नारायण
1: जी हो
2: मिश्रा दर्शिका
1: ओहो नारायण जी कहाँ बिश्रम अपने अपने हैं नहीं बिश्रा सक जाए तब सीताराम फोन कर रहे हैं सीताराम आई गिर का बताए कहा बा और हाल खबर
2: बड़े बा कपल थोड़ा बदर घमा बा कपल
1: बदर घमा बा आज सके काम में बाटी की कहर बाटी
2: काम में बाटू हेरी मैं लाइकपुर
1: लाइकपुर बाटी ना भाई खाना पीना तो हो सकल
2: खाना पीना तो 10-11 बजे हो गए
1: ओके कार्यक्रम में सब आगे जनैली आज तीन कुछ सितर सितर में बदर घमा टाइप के बाओ दिन से झटकार झटकार चाहिए नहीं हो ना
2: नहीं हो
1: कार्यक्रम में सहभागी जनैली खुशी लागल आज तो अंताक्षरी खेलना हो अपने अंताक्षरी तो नहीं खेलती शायद
2: हजुर हजुर
1: तो हमरे अपने से एक तो गीत सुनब तब तो
2: अरे हजुर सुना दे गीत
1: लिस्ट शुरू कई धारी रो ली एक तो गीत
2: मकर चले साइकिल खर फुलबारी के हवा से नंदी पत्ता पर मोटर चले साइकिल खर फुलबारी के हवा से नंदी पत्ता फर मोटर चले साइकिल खर
1: ओके देव देव धन्यवाद मजा गीत के लगा भाई हमने एक गीत बजाब आपने किन किन सुनाई चाहिए नाम ली
2: सबसे पहले अपने रत्नापुर नगर है
1: धन्यवाद
2: और जैसा भी कार्यक्रम सुन थे नारायण सिंह सुना
1: सको बाई बाई हजार राम राम नारायण चौधरी जी रमाइलो गफिल वहां से अपने के भी हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई का नाम जानकारी करती अठे बार को गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटो डायल करते कर 91 551 लाइन खुलेगा

0: हजुर बिल्कुलै रमालो गीत सँगै सँगै ठिक एकैछि ब्रेक जोरी ब्रेक के पासमा रेडियो सरके गाउँ पेनाइजी तपाईँसँग एकैछि सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पासमा नै बाटो डाल गर्दा गर्मी 091-561-2555 लाइन खुल्लै भयो
1: नेपालमा पाजेना बिखा सापनको विषयमा सुन एक ठोर गरैचा जोन खास कै राति समयमा घर भित्र पैठ सेक्छ यी कटला से निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कै सास फ्यार जो निसेक्ना मेसे लक्क हो सेक्ठा और डोम जोन बडा रिसाहा मेरी रथ निकर फाट ठुले डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कै संध्या बिहान देख पर्छ निकर कटला से फे लक्क हो सेक्ठा ओ और कैरी जातक साप निकर कटला कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था रकत फे पाची होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोकने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
2: बर्खा छा को अनाज बिक्री न समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना झूर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा ना सीबे सापन का जसाई का घटना झूर बिना कर लग पा जाए
3: झूर जसिन सापन का डसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा डस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै छ
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस का टस बाटी, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आई हो बड्डो घर कहिया सीज जाइबो, पाछ से शुरू करल मने घर सीजा सेकल।
1: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नहीं करत, का कहना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484-43-26।
5: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस्, यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
6: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन, सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
5: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
6: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
5: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ,
6: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
7: ए रुक रुक रुक,
8: के भयो किन कराएको यस्तो
7: दाई, यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे,
9: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड, यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र हो नि, इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
10: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
11: हजुर व्यापारिक विश्रामको पाजा फ्रान्स स्वागत भयो कार्यक्रममा, कार्यक्रममा बाटोमा मिसन अमिक साथ देहरी बाटो बाबु र छात्र मगर लगभग लगभग कार्यक्रमको निर्धारित समय डगर काटेर आगल अपठाटा बाबु एकजना बेला होगी उमारे अठार वर्षसम्म रेडियो सुनको साथ दिएर सबको झन् धन्यवाद, हमन फोन करके साथ दिली मजा मजा अन्ताक्षरी खेलके साथ दिली आफ्नो धन्यवाद, देती टेकमेटको साथ दिएर बाबु रत्नपुर मगर हेपे धन्यवाद, देती अन्तिम एक ठोर रमाइलो गीत छोटीमा मिसन अरे कार्यक्रममा भेट्न बाचाका त्यागा छ हम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन अब के पार शुभ रहे रेडियो टिकापुर एफएम सुन्ते करबी।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: ए बा आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आएकी होली मेरी चेली
5: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन के ढुक्क पारेकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहला महीना को तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु सिटिजन लाइफ मित्र कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन् भाइका लागि बाल भविष्य योजना तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वहाँ चाहिँ मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे
4: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ
5: बुवाका अनुभव रे मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त हैन बुवा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा रे भविष्य सँगसँगै हितो छ झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटा का आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर बर रहत
0: का हुई। कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी हरी थी, ना कबू पेंसिल हरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटी। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में। रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
1: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन अर्याल एमबीबीएस न्याम्स
2: यही जे 23 गते शनिबार

0: कबू काफी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज काकना हो बाबा के होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कापी हेरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
3: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
4: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मई नहीं जाए, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तुम अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकलछु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उकला सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहल्लाब साउरो पात्र नेपाली पात्र मफी सिंटी ढलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से समय में विद्युत लाइन नहीं बनल टीकापुर के उपभोक्ता समस्या विद्युत लाइन हाली बनाई पड़ना नागरिक में सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री शाह विरूद्ध बहुमत प्रदेश सभा सदस्य के हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभा के बैठक जेठ 25 गते समय के लागि स्थगित ओ नेपाल एशियन गेम्स पुरूष क्रिकेट में छनौट पूरा खबर टीकापुर लम्की विद्युत पर्सा रन लाइन समय में नहीं बनलक नागरिक को समस्या के हुटी रहा एक वर्ष से न्यायघने काम कर सेकना करलक ठेका लगलक विद्युत प्रसारण लाइन बनेना काम में भिन फिर नहीं सकलक कारण नागरिक को समस्या हुटी रहा एक वर्ष आघने काम ओरिनाका के ठेका लगलक लम्की टीकापुर विद्युत प्रसारण लाइन काम समय में नहीं बनलक विद्युत आपूर्ति में समस्या नकल बाट विद्युत भोके माग बहती गए पाछा प्राधिकरण के भजनी राजापुर टीकापुर के लायक एक ठो खम्बा में अलग अलग लाइन लगना करके 33 केवी लाइन बनाई पर्ना लगल बाट 10 मीटर के खम्बा में 30 वर्ष से आगे नई सीधे तनलक लाइन खेतो खेतवा पलक अब रुखवा व लगना व मरमत संभार कर अपना कठिन हुई पाछा सड़क के किनार नया लाइन बनेना लगलग बाट अब टीकापुर में 10 मेगावाट राजापुर भजनी स्टेशन मसे करीब 6 मेगावाट विद्युत खपत उठी रह 22 मेगावाट माखुलक 17 मेगावाट विद्युत प्रवाह कर सेकना क्षमता की लाइन पगल के तार चुटना जम्पर जन्ना काम हुटी रलक नेपाल विद्युत प्राधिकरण के टीकापुर वितरण केन्द्र के प्रमुख इंजीनियर आनंद सापकोटा बोटीलोट ए विद्युत माग भरलक बेला 160 वोल्टसम झरना विद्युत उपकरण हुकन के माग नई करना व आपूर्ति बंद होना समस्या हुटी रह टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव प्रकाश तिमी सेना बोटीलोट जडन कार्य केलिक निर्माण कंपनी कलक हुईलक सामग्री उपलब्ध करेन व साइट क्लियर करना काम ढिलाई हुईलक कार्य सम्पन्न करना फिर ढिलाई हुईलक लक्ष्मण निर्माण सेवा प्रतिनिधि जीवन राणा बोटिलोट प्राधिकरण के सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय के प्राविधिक प्रमुख इंजीनियर दीपक चौधरी के खम्बा ओपिन इन्सुलेटर केन्द्र ढिला हुईलक अमौरीमा सुखलक 2 रूखवा पथैमा व्यक्तिगत जगह मरलक लिपिसके रूखवा हटेना बाकी रहलक एकठो खम्बामा डबल लाइन क्रस लाइन हुईलक समय में लगना बोटिलोट वहां के हाली लम्की तोरैयापुर क्षेत्र के 9 किलोमीटर लाइन चार्ज करके भजनी चलेना कोशिश सुटी रहो अस्तक टीकापुर के लोड कम हुईना फिर बोटिलोट प्राधिकरण के 4.5 करोड़ के लागत में लम्की टीकापुर 16 किलोमीटर नया लाइन बनेटी डबल सर्किट तार धरलक मिलना 500 जति खम्बा गाड़की विद्युत आपूर्ति क्षमता बढ़िलो बाट समय में लाइन नहीं बनलक यहां की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा में नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेतृत्व परिवर्तन के प्रक्रिया औपचारिक रूप में आग बढ़ी बाट दल के नेता तथा मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व विरूद्व बहुमत प्रदेश सभा सदस्य के हस्ताक्षर बुझी बाट प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाही के अनुसार आज कांग्रेस संसदीय दल के सचिवालय में नेता परिवर्तन के माग सहित हस्ताक्षर पेश करलबाट वहां के केन्द्रीय कार्यालय प्रतिनिधि पठाके अपनहन दिलक निवेदन के टुंगो लगेना विश्वास व्यक्त करलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा में नेपाली कांग्रेस के 18 जना सदस्य रहलबाट उहमध्ये प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर देवाहाल अमेरिका में रलग उपस्थिती हुईनाका के प्रदेश मरलक 17 प्रदेशसभा सदस्य मध्ये 9 जना दल के नेता परिवर्तन के पक्ष में हस्ताक्षर करलबाट हस्ताक्षर करना में प्रदेश

0: વિશ્રામ પ્રસંગ પાછા ફરસે વિષ્ણુ ત્રિવી સામુદાયિક રેડિયો ટીકા પુર એફએમ
1: બીટલ 25 વર્ષ કે લંબા અનુભવ રહેલ ડાક્ટર હેમંત સ્વાર સે ટીકાપુર માં સત્કાર પોલિક્લિનિક પ્રાલી ગુંબા રોડ ગોલ ચોક લગ આપન ભવન સે સેવા દેતી રહેલ સક્કુ બેરમ હેન જાણકારી કરાઈ તીએ સત્કાર પોલિક્લિનિક માં બિહાન 7 બજે સે સંધ્યા 7 બજે સમ મેર મેરિક રોગ કે ઉપચાર તથા સ્વાસ્થ્ય પરામર્શ દેના હુઈલક માર બેરમહે ઉકર સંપર્ક કઈ કે ઉપચાર સેવા લેહ અનુરોધ કરતી સત્કાર પોલિક્લિનિક સે દે જૈના સેવા ઓપીડી સેવા ડિજિટલ વિડિયો એક્સરે ઇસીજી સેવા ડિજિટલ અત્યાધુનિક ભારી એક્સરે સેવા નિયમિત ઓટો એનાલાઇઝર સે સક્કુ રગત જાંચ ફાર્મેસી પ્રયોગશાળા સેવા હાથ જોડણી સેવા ટુટલ હાથ જોડણી માં પ્લાસ્ટર સેવા ઈએનટી સેવા સુરક્ષિત માતૃત્વ સેવા ગર્ભવતી જાંચ સેવા યૌન રોગ કે પરામર્શ તથા ઉપચાર સેવા સંગ તાલીમ પાયલ સ્વાસ્થ્ય કર્મી સે ક્ષય રોગ તથા કુષ્ઠરોગ સંબંધી સેવા ફેદે જાય સંપર્ક સત્કાર પોલિક્લિનિક પ્રાલી ગુંબા રોડ ગોલચોક લગહ ટીકાપુર કૈલાલી ફોન નંબર 091-560-095 ઓ મોબાઇલ નંબર 98-48-42-73-59
0: કે તપાઈલાઈ થાહા છ
2: એઉટા પ્લાસ્ટિક ઝોલા નષ્ટ હુન સયો વર્ષ લાગ્છ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
0: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
0: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
0: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
0: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली
0: विश्राम पाछा फर्सी स्वागत बा राष्ट्रिय सभाकै सांसद थुक्रा आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री वारेन्द्र शाह भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध विपरीत दलक अभिव्यक्ति नैशिचलक्षम बैठकै काम कार्यवाही आग बढ़ना नै दलक अडान लिएर पाछा बैठक स्थगित हुलबा बैठक शुरू हुलसँग आकस्मिक समयमा सांसद थुक्रो नेपालमा फेदियो ठाउँमा भारतकै जमिन मिस्तसेफी मुलुकके कार्यकारी प्रमुख सांसदकै रोष्टमा आँखा बोल्ना कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुलक कति तत्काल सदनमा अलग देशवासीकै नाममा माफी माग पर्ना जोड़ दिलबाट बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद पदम बहादुर परियारकै प्रधानमन्त्री दिलक अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र तथ्यहीन हुलक बोटेरबाट नेकपा एमालेकै सांसद रोशनी मेचेल फे प्रधानमन्त्री शाह तत्काल सांसदमा आएकी माफी माग पर्ना धारणा ढलबाट अस्थक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद घनश्याम रिजाल सीमा विवाद सिन विषयमा राष्ट्रिय सहमति कर्के केही आधिकारिक धारणा सार्वजनिक अर्पणा कति प्रधानमन्त्री शाहकै गैर जिम्मेवार भनाई सीमा विवादन बजेटी गैलक विचार व्यक्त कलबाट बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाके सांसद तुल प्रसाद विश्वकर्मा मुलुकी कार्यकारी प्रमुख वार्ता वा सांसदमा से सीमा विवाद समाधान गर्न सट्टा भारतकै समेत दावी नै कलक अभ्यक्त दिन खेदजनक खुलक बोटिलोबाट राष्ट्रिय सभाकी अरू बैठक काल जेठ 20 गते बुधबार दिनकै 12:15 हुइनाबा प्रतिपक्षी दल हुक्र अवरोध पाछा प्रतिनिधि सभाके बैठक जेठ 25 गतेसम्मकै लागि स्थगित हुलबा प्रतिनिधि सभाकै आज बैठक शुरू हुलसँग प्रतिपक्षी दलकै सांसद हुक्र प्रधानमन्त्री वारेन्द्र शाहकै नेपाल ओ भारत सीमा मिस्लकै दलक अभिव्यक्ति सचेना मागधर्ती उठलक विरोध कलबाट अस्थका सभा मुगदोल प्रसाद रियाल सांसदकै हिंसाको बैठकको अनौपचारिक छलफलमा समेत विपक्षी दलकै तर्फ मसे आफ्नो धारणा अहिलेको महा आफ्नो ध्यान आकर्षण समेत ठूल कति सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह कलबाट सभामुख आग्रह पाछा समेत विरोध निरन्तरता धेर पाछा सभामुख अर्याल विपक्षी दल सांसद कोन पालै पालो बोल्न समेत दिलबाट उहकर्म नेपाली कांग्रेसकै सांसद अभिवेशक प्रताप शाह प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्त त्रुटिपूर्ण वा आपत्तिजनक रलक सचाईपूर्ण बोटिलोबाट सांसद शाह प्रधानमन्त्री अन्जानवश स्वस्थक अभिव्यक्ति दिलक भुहिलक चिन्तनजनकको जान बुस्की दिलक भुहिलक राष्ट्रिय सुरक्षाकी लाग्नै खतरापूर्ण

0: अलग संसद उपस्थित थोके माक्सिमा कपना महाकर्लबाट श्रम संस्कृति पार्टी सांसद हर्क राज राई देश के सीमाना हो सर्वम सत्ता जगैना विषयमा सक्कु दलके एकमत पना कलकती प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हो कि माफी पर्णाबुटिलोबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद खुशबु ओली प्रधानमन्त्री कि अभिव्यक्ति कूटनीति कानूनी राष्ट्रिय सुरक्षा के दृष्टि अत्यन्त गम्भीर प्रकृति केरल प्रधानमन्त्री के दल ओ राज्य के निकाय मसिया सिंह अभिव्यक्त के बचाउ ढाक छोके प्रयास करना और दुर्घटना निम्ति रहिसेकना बोटिलोबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के सांसद युवराज दुलाल राष्ट्रिय सुरक्षा के विषय सकुदल के साझा विषय हो के प्रधानमन्त्री के अभिव्यक्त बारे प्रधानमन्त्री के दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धारणा का हो के सदन जानकारी करना महाकर्लबाट नेकपा एमालेके सांसद गणेश सिंह ठगुना देश के कार्यकारी प्रमुख सदनमा धलक अभिव्यक्ति के दीर्घकालसम्म राजनीतिको कूटनीतिक प्रभाव रलक उहाँके देशके हितके लाग गल्ती सच्चाइके आँखा बढ्ना मजाहुलो बोटिलोबाट अगरपासा विपक्षी दलके सांस्थोक र विरोधके नै बीच सभामुख दोल प्रसाद अर्याल प्रमुख प्रतिपक्षी दलके नेता भीष्मराज आङदेम्बे बोल्ला समयमा दिलसफी उहाँ समय नै मिलपासा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपति के कार्यालयमा से प्राप्त पत्र वाचन करके बैठक स्थगित गर्नबाट प्रतिनिधि सभा के अरू बैठक जेठ 25 गते सोमबार बिहान 11 बजे बैठनाहुलबाट खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछा फेरसे विश्वतिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना ओट्र फिर पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
3: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: असार 6 गते पहिलो शनिबार
5: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया गण्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
3: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
0: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
5: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9688800008 र 9825677772
6: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
7: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585088

विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा अब खेल खबर। नेपाल एसियन गेम्स पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिता खेला छनौट हिलबाट मलेसियामा जारी छनौट खेलमा मंगलबार घरेलू टोली मलेसिया कि चीन हनौ विकेट हटेल पाछ नेपाल जापानमा आयोजना हुन आसन्न एसियन गेम्समा स्थान बनेलबाट जितकेला 85 रनकी लक्ष्य पञ्चलक मलेसिया 7.5 ओभरमा एक विकेटकी क्षतिमा लक्ष्य भेटेलबाट हिंस्याको पहिलो ब्याटिङ कलक चीनकी निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट क्षतिमा 84 रन बनेर रहे जितसंग समूह मसे मलेसिया फे छनौट यात्रा तय गर्नबाट समूहमा लगातार दोस्रो हार खेपलक चीन छनौट मसे बाहिरबाट अब समूहकी अन्तिम खेलमा नेपाल र मलेसिया बीच बिहिबार प्रतिस्पर्धा हुनबा नेपाल समूहकी आफ्नो पहिलो खेलमा चीन 221 रन हटेल रहे समूह बीमा ओमान हङकङ बहराइन ओ सिंगापुर हलबा समूहकी शीर्ष दुई टोली एसियन गेम्समा छनौट हुन प्रावधान रहलबा। यह समाचार संखोज खबर बराली जेना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक जो समय में विद्युत लाइन नई बनल टीकापुर के उपभोक्ता समस्या विद्युत लाइन हाली बनाई पर्ना नागरिक के मार सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री शाह विरूद्ध बहुमत प्रदेश सभा सदस्य के हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभा के बैठक जेठ 25 गते सम्म के लागि स्थगित नेपाल एसियन गेम्स पुरूष क्रिकेट छनौटमा डीटा बक्ला खोज खबर अत्र प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद डीटा बक्ला खोज खबर से महिषा चौधरी विदा हेटु एकर पास 6 बजे के खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम।

0: ऐ विवेक, ऊ ध्यान खास झपासो जिन्छ हो
1: मर्गिनु
0: मर्गिनु एक घर फुटबल बन्द कर विवेक खान वहाँ कहाँ अभिधान वहाँ झप्चारो ना जाओ कहदन हूँ
2: ओ हेरो त उहाँ सब भागल पाटल की का हो विवेक खान एक हरि स्कूली फुटबल हेराइ लगता झन का जता पो आपलन
1: जो आलि मेन का सब काटल मुना मुना
0: विवेक जिना क्या संघारू जो शांत होकर झूर निचल का बैठो हमरा तू यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी अई पारस तू घर दादू है ना मोटरसाइकिल दिखाए कहो तो
2: हो विवेक है ना यहाँ खुला ठाव मसुताई झूर झलंग झुलुम निकरा खन मारी काटी ले वही है ना हाउ डी है तू फिल्म में काटला खल सुईटी बा काटल ठाव में ना छुआ चलाई न्यूज ना
0: अब मैं विवेक खाना सजिल हुई ना कही खाओ आकर कस के लग पीटी तां धीरे धीरे खोल दे तू वो घरी वो मुंडी फेंक हार दे हम
2: बिठा रोशन मैं यह जाना विवेक का जूता वो मजा धीरे धीरे निकाल दे
3: झूर जसिन सापन का दशाई खतरनाक नहीं रहा समय में जो उपचार कराई से क्लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना फे बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में फुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति हुईना से जोगाई से जिठा
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाक लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाई लाक आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिखे छे जिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
6: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
7: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
6: अब त म ढुक्क
8: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
7: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: आई बुढल्ला सुन्छ कि नै वानन्दे गुवा जागिलि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने ना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरा दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरे थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में
4: असार 6 गते पहिलो शनिवार
3: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गर्ने